तुम्हें शाड़ कोई अबर ना त्याऊं, जो अबर चाहा उसो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हास दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास ने वरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करिया और अच्छा। राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता।

जवन काल सब जगत बनायो देव दया जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाध कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्टि कल फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान कड़ कड़ के पड़ पड़ की जान जब उदकारख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकारख करत हो कब हूं मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आपे अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रह निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब अनिल अनाद असंभ

देती बरनत पहन पहन तो हे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिध सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहे पूपा अंडज देरज से तद कीनी पुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हो बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एक ऐठा सुगरी सृष्ट दिखाए चम भाव या जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अबरच्छा मेरी तुम करो सिख उबारिय सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुझ तब सरणी पारे तिनके दुष्ट दुख तुहु मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टारे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो दुष्ट शाह छुआ सके न कोई

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को अशय करता। श्री अस्त

वे सारणा। अंगीकार ऊहो करे तेरा, कार्य सब सवारणा। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता

संसार ही मंगता है। तुसी कल्ले ही दाते हो, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम दियो मंगत जन को सदा रहो रंग रत। महाराज बाकी सारी दुनिया मंगती है,

0: महाराज जी ने अपने सुभाए मान मुख दे विचों बचन उचारण कीते हन।
1: जथा भाव ने तथा करी जह।
0: महाराज जी कहिंदे बादशाह जिवें तेरी भावना है जिवें तेरी शरदा तू ओवें ही करना कर ते भावना उहदी सी। मैं महाराज आप जी नूं पिंड दे के जाणे ने ए शरदा लैके आया सी महाराज।

अनक लीला राज रस रूपं शतरत चमर तखत आसनं रचांत मूड अज्ञान अंध नानक स्वप्न मनोरथ माया सुपने।

0: राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भतः संत बिखिया शलं शदरं नानक बिन हर संग न चालते।
1: राज कपटं रूप कपटं कपटं टैंके दी टिप्पी दी आवाज आनी चाहिए। धन कपटं कुल गर्भतः पाठ गर्भत है इकट्ठा ही करना गर्भत है नहीं कहना गर्भत है। संचंत ससे दी टिप्पी चचे दी भी टिप्पी ते तत्ते नु सियारी संचंत बिखिया छलं छिद्रं नानक बेन हर संग ना चालते। संचंत पाठ पूरे ध्यान दे नाल दो टिप्पियां लगा के करना।
0: बेखंडरो की पोला तुम्मा दिसम सोहना
1: तुम्मा पाठ भी कस के करना ते दिसम पाठ भी कस के करना।
0: आड नाल हदड़ो मुल
1: टिप्पी नहीं है हां जी ए लहदड़ो टिप्पी तो रहत पाठ है पोथियां दे विच सरूपां दे विच लहदड़ो पाठ छापया गया है हाहे दी टिप्पी दे नाल। आड नाल हदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया।

0: नाच राज सुख मिष्टं नाच भोग रस मिष्टं नाच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हार नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शनं।
1: नाच पाठ जेड़े ने जिन्ने भी आए साध संगत जी ए पोले ही करने, नाच नहीं किते भी उचारण करना। नाच राज सुख मिष्टं, नाच तो भाव साध संगत जी है नहीं हन। जे नच कह दिता टिप अद्धक ला के ते फिर ओदा हो जाएगा नचना, पर असल दे विच गुरु महाराज सानू की कह रहे हन, नाच राज सुख मिष्टं। राज दा सुख मिठा नहीं है, पर जे नच कह दिता ते अर्थ दा अनर्थ होवेगा। पोले उचारण करने, नाच राज सुख मिष्टं, नाच भोग रस मिष्टं, नाच मिष्टं सुख माया।

0: आठ पहर हर त्याय हर जास नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उच्चरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत न माया पाहे बलंदड़ी बोझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप।
1: मेदनी पाठ साध संगत जी जदों भी आवे ददे दे नाल इनू पोला मेदनी ही करना मेदनी धद्दा नहीं लाउणा जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप।
0: पौड़ी जा प्रभ भय दयाल न व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल पहे शरीर जान धूरी नाया।

साध संगत जी ओ लोग अफगान वाले इलाके दे विच भी जेड़े साध संगत जी सिख ने उन्हां दी बोली इस तरह की है। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सचे पातशाह महाराज जी साध संगत जी उस इलाके दी बोली दे विच इन्हां शब्दां नूं उचारण कर रहे हन। सो साध संगत जी जेड़े तरीके दे नाल सतगुरु जी ने यह है पंजाबी दा ही शब्द है। सो साध संगत जी कई बार शहरां दे विच जेड़े लोग उधरों उठ के आण के बैठे हन ते ओ साध संगत जी एक नूं हिक कहिंदे असीं उहनां नूं मजाक करदे आं पर साध संगत जी गुरबाणी च इह सतगुरु जी ने शब्द वरते हन क्योंकि आपो अपने इलाकियां दीआं बोलियां सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साध संगत जी सारे बन्ने जिथों जिद्दां दा गुरसिख आया उहदे शब्दां नूं लै के जां बाकी गुरु साहिबानां ने भी अगे हुण आपां कल नूं जिहड़े भाग अगले भाग दी रंभता होणी है उहदे च साध संगत जी गरीब नवाज महाराज जी ने फारसी जबान नूं वरतिया है। सो जिद्दां दा आया इंसान उदां दा उपदेश सतगुरु सच्चे पातशाह उहदी जबान चों नूं देंदे रहे। तो साध संगत जी अपने शब्दां नूं विच बाड़ना नहीं जो गरीब नवाज ने लिखा है ज्यों दी त्यों ही पढ़न दी कोशिश करनी।

0: कछू ना जानो। कछू पाठ जेड़ा है लंबा करना, कछू कह के नहीं छड़ देना। कछू मतलब है किश कुछ भी नहीं जानदा सच्चे पातशाह, हे नाख दर्थ हुंदा मालक, मालका मैं कुछ भी नहीं जानदा। जे कछू कह दिता ते अर्थ कछू कुम्मा जा कुछ होर अर्थ भी बनेगा। सो इस करके कछू लंबा पाठ करना, नाथ कछू ना जानो।
1: रहाओ तुम कहियत हाओ जगत गौर स्वामी, हम कहियत

चाह है, दो हाहे कठे हन, कई चाह पाठ कर जाते हैं, पर गरीब नवाज जी ने दो हाहे उचारण करके चाह है जे नानक सदा सिमरन नारा।

0: खोजत खोजत बहु परकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंध हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे।
1: सुरजन पाठ इकट्ठा ही करना सुरजन एदा उचारण करना सुर ते जन नखेड़ के पोथियां च लिखिया है चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे।

संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाहे वाहु चित लायो, सो संचयो जित भूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परिया, गुरप्रसाद

कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नस सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप।

0: सुख भी पोला ही करना, सुख पोला करके फिर अगला भुख है, फिर अगे रुख है, फिर ये तुख पाठ पोला करना, दो पाठ विचकारले जेडे ओ कस के करने हन।
1: टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उर धारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ, पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया।

बाबा आया करतारपुर देख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। इथे ग्रस्तियां आला बाणा पहन लिया जो रोज पहनते सन, उदासियां आले कपड़े ला दिते। हुण ते सारियां नूं उपदेश करना, हुण सारियां नूं समझाना। यह एक नीति सी जिस बाणे विच, जिस भांडे विच तुसीं रब दे नां दा अमृत पीना चाहते हो। साडे कोल भांडे हैगे ने, स्टील दे भी हैगे ने, चांदी दे भी हैगे ने, सोने दे भी हैगे ने, मिट्टी दे भी हैगे ने। किहड़े बर्तन दे छकना चाहते हो, तुहानूं किहड़े बाणे च गल सुनना चाहते हो, असीं उस बाणे सुनाउण नूं तैयार। इतनी फराग दिली गुरु नानक ने दिखाई, यह गल वखरी है। वह फराग दिली अज साडे कोल रही ने, इस वास्ते प्रचार दे पक्त उते असीं बिल्कुल पछड़ गए, बिल्कुल पछड़ गए, नहीं दस सके जगत नूं। कदी इतिहास पढ़ो, कुल 200 मील का भ्रमण है मुहम्मद साहब का, इस्लाम सारी दुनिया च फैले। खच्चर ते बैठ के हजरत ईसा का कुल 300 मील का भ्रमण है, ईसाइत सारी दुनिया च है। नौखंड पृथ्वी का भ्रमण गुरु नानक का। मैं तो सुन के हैरान होया, होंगकोंग दे चाइना दे जिहड़ा शहर है नानकिंग, नानकिंग कहिंदे ने गुरु नानक दे नाम ते, बौद्ध भिक्षुआं ने रखिया सी। बौद्ध मंदिर दे सतगुरु ठहरे, बौद्ध भिक्षुआं नूं उपदेश कीता, उन्हां नूं उस पिंड दा नां रखिया नानकिंग। शंघाई दे बहुत वड्डा गुरुद्वारा भी सी, कम्युनिज्म दे आंदियां सिख उत्थों निकल आए, होंगकोंग दे जाके वसे। बर्मा गए सतगुर, सिक्किम गए, भूटान गए, तिब्बत गए, लेह लद्दाख गए, फिर सारा रशिया, रशिया दे चक्र चिन्ह मिले ने, निशान मिले ने, सारा अफगानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, लंका, इतना सारा भरम भ्रमण और इतना सच का उपदेश दिता संसार नो, सानू कहने ते 2 करोड़ भी नहीं ने। चलो इस संबंध च मैं एक निकी जिहा गल तुहानू सरवण करा दें। यूरोप दे देशां दी सियाहत करके, भ्रमण करके, जब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वापस गया ना अपने देश, उदों देश दी वंड नहीं हुई सी। लाहौर विच पहुंचिया ते उहदे स्वागत विच बहुत वड्डा जलसा रखिया गया। क्योंकि हुण चोटी दा विद्वान सी, 3 कवि किसी हद तक संत कवि ने, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली ते संस्कृत दे संत कवि रविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। शायद आपनो पता होवे गुरु नानक दे बारे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़ी कीमती नज़म लिखी सी, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम दते सच दा दीवा जलाया, पर महफिल ते अंधियां दी सी, किसी ने अखा ही नहीं खोलिया। तू कदम कदम दते रहमत दी बारिश की थी, पर जमी काबिल न थी, जमीन ते बंजर सी। मेहनत तू गुरु नानक बहुत की थी, उस मेहनत का फल असी नहीं देखते। इकबाल इंज कहिंदा। लाहौर दे जद वापस आया ते लाहौर दे पतवंतियां ने, शायरां ने, आलम फाजलां ने उहदे स्वागत समारोह दे च बहुत वड्डा जलसा रखिया। इहदे च अच्छे अच्छे साहित्यकार, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर इकट्ठे होए। कुछ कवियां ने अपने कलाम सुनाए, कुछ शायरां ने अपने कलाम सुनाए, ते फिर उन्हां सारियां ने इकबाल नूं कहा तुसीं कुछ सुनाओ। लेकिन भरे जलसे दे चों, इकट्ठ दे चों मंग आई, तुसीं जिहड़ा यूरप दा भ्रमण करके आयो, सारे यूरप दा, असीं होर कुछ नहीं सुनना चाहते, तुसीं ए दसो हिंदुस्तान दा धर्म ते यूरप दा धर्म।

जॉर्ज फिफ्थ राजा 72 देशां दा, इंग्लैंड दा राजा, ब्रिटिश अंपायर दा मालक, वो हुक्म करता है भी हिंदुस्तान दे विच जेड़े जेड़े भी धर्म ने अपने धार्मिक ग्रंथ लैके उन्हां दे आगू दिल्ली चाहो मैं वेखना चाहना है। सारे आपो अपने ग्रंथ लैके आए, हिंदू वीर भी भगवत गीता लै आए, वेद लै आए, राजा नाभा, राजा पटियाला, राजा जींद, जिन्ने भी सिख जगत नाल संबंधित राजे ने उन्हां संत अतर सिंह महाराज नूं आख्या, महापुरशो तुसीं लैके जाणा गुरु ग्रंथ साहिब। संतां दे ठीक है पर इदां नहीं जावांगे, जुलूस दे रूप च हाथी चलणगे। हाथी ते महाराज दा स्वरूप टकालिया, आप चौर करन लग पए ते शब्द पढ़दे जाण, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसाइया, कोई अलाहे। कहिंदे ने किधरे महापुरश उतरे ने सवारे तो हिंदू पैर चुम्मण ते मुसलमान हस्त चुम्मण ते सिखा नहलदियां पुछ लिया भी महापुरश ते साडे ने, तुसी क्यों पैर चुम्मे ने? ते हिंदू कहिंदे इन्हां दे चरणां दे दर्शन कीते ने, पद्म रेखा है। मुसलमानां नूं पुछिया तुसी क्यों हस्त चुम्मदे हो? कहिंदे नबी वालियां रेखावां ने हस्त विच, लाइक मैसेंजर ऑफ गॉड। चलो सवारा तुरिया गया, जॉर्ज पंचम दे अगे पहुंचे, हुण इंग्लैंड दा बादशाह है, टौर नाल बैठा है। जदों संत अतर सिंह महाराज उतरे, चेहरे दा नूर गमी है, जेड़ा रंचक मात्र नहीं सी ना तख्त तो लिया भी लिया, धार्मिक ग्रंथ लिया लिया के दिखाई जाओ मैनू, उठ के खलो गया। महाराजा पटियाला साहब नू होरा नू इंग्लिश विच पुछदा है, ही इज योर गुरु? बाबा अतर सिंह ये तुहाडा गुरु है? संत अतर सिंह महाराज पुछदे ने की आंदा राजा? वो कहिंदे जी पुछदा है तुहाडा गुरु है, आंदे इहनूं कह दिओ गुरु ते हाथी ते सवार है, मैं ते चोर बरदार हां। तू पुछदा है, जॉर्ज पंचमी पढ़ की रहे सन, जदों सवारा उत्थे पहुंचिया पढ़ रहे सन, को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। उन्हां टीका करके सुनाया भी ये पढ़ रहे ने, दुनिया विच कोई वाहिगुरु वर्गा, गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा राजा नहीं, ये वाहिगुरु ही है ना, वाहिगुरु दे बोल ने, वाहो वाहो बाणी निरंकार है ते जेवड़े अवरना कोई। हुण मैं कथा कर रहा है, तुसी चार दुवारी तो बाहर सुनदे होगे, चेहरा नाम ही दिखदा होवे, मेरी कथा मेरी हाजरी लवा रही है, वो दूरों ही पता होवेगा भी कौन कथा करदा है। ये बाणी है गुरु दी, अकाली बाणी, पोथी परमेसर का थान, जिथे बोल ने उथे वजूद है वाहिगुरु का। शब्द चेतन हुंदा, जड़ नहीं हुंदा, इनू मूर्ति ना समझ लियो। जीवन विच तब्दीली आउंदी है इन्हां शब्दां नाल। इहदे वर्गा कोई राजा नहीं, जेड़े दुनियावी राजे ने, चौहां दिनां दा तख्त है, प्रजा उल्ट हो गई ते तख्त मूदा, जदों अर्थ करके सुनाए ना जॉर्ज पंचम नूं, वो चेहरे वाल वेंदा रहा। ते हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़िए, जदों बड़े बड़े विद्वानां नूं पढ़िए ना, कहिंदे उन्हें 5 पाउंड मथा टेकिया संत अतर सिंह नूं ते धरती ते मथा लाया, जिदां सिख मथा टेकदे ने। वो नालदियां ने पुछिया, जॉर्ज पंचम ये की कौतक है, तू राजा है 72 देशां दा, एक फकीर दे अगे झुक गया है, की वेख्या सिखां दे इस साधु विच? अज भी वो अल्फाज इंग्लिश विच प्रगट मिलेंगे तुहानूं। वो कहिंदा आए सौदा, स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस सेंट,

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी।
1: So the Musiah, baby. Yeah. Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

काफी बड़ा है। शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि जब तो उसी विचो दो चार भी उठते हो फिर वो हिल जुल हो जाए, थोड़ा समय लग जाए जोड़ के लग जाए। ये कहता भी मेरे वर्गा ने आसरा केड़ा किसा ना लेंदे ने आसरिया दे आसरे गुरु न्योटिया दी ओट वो सारे दस्या गोविंदवाल साहब है उथे गुरु नानक दी तीजी जोत गुरु अमरदास महाराज आखो सत उन्होंने गुण गा रहे। हूं किधरे ते लिखिया भी गड्डा जा रहा सी संगत जा रही सी जथे जाते उन्हें गड्डे च पा लिया। भाई वीर सिंह जी ने लिखा कई महीने लगे रिड़दा रिड़दा गया आखो सत कई महीने लग गए। गोविंदवाल साहब पहुंच गए बार गेट ते बह गए मन च तार लिया किसी ने कहता तेरे कोड़े तू नहीं अंदर जा सकता मोहल्ला खराब करी इन्हें मन च धार लिया भावे साल बाद बुलाउण तां वी इह दर नहीं छड्डणा गज के आखो सतनाम।

साहब आप चल के गए ओदा बुआ खड़का के ओनू राजी कीता। भाई वीर सिंह से जिवें जख्मां नू मलम लगदी है मलम, ये प्रेमे कोड़ी दे ओ सत्संग करन वाली अजे बाहर ही है गेट, जख्मां नू जिवें मलम लगी धीरज होर मिल गया ते ओ

0: मौज में अगर आ गए,
1: कतरे से दरिया कर दी, नदरे रहमत जिस पर पड़ी बंदे से खुदा कर दिया, गज गया पसंद।
0: आगे मौज कहते ले आओ फिर अंदर, ओनू ले आओ अंदर जेड़ी तलाई विच, एक तलाई होंदी है जेड़ी थले विछाने रजाई उत्ते लैने, ओ नहीं एक तलाई होंदी जिहदे च महापुरश बंदगी आले इशनान करदे, ओनू वी तलाई कहिंदे। महाराज कहिंदे ले आओ अंदर, गुरु अमरदास जी कहते जेड़ी तलाई च असी इनान करते हैं ओदे च इनान करवा के लियाओ। जदों कहते इनान कराया हुण वाइब्रेशन सही, वाइब्रेशन च ताकत आ, तुहाडे घर का माहौल हो रहे, बाजार का माहौल हो रहे, हरिमंदर साहब चल जाओ तो माहौल हो रहे, वाइब्रेशन नाम की लज के आखो साथ में नाम बोल। ओ जदों तलाई च इनान कराया महाराज सच्चे पातशाह जी दी, जिहदे च महाराज करदे सी, कहिंदे शरीर दा कोड राजी होना शुरू हो गया। जदों चिट्टे बस्तर सोहणे नवे पवा के दस्तार सजा के अंदर खड़िया ते गुरु साहिब ने जे नजर कीती ते मन दा कोड राजी हो गया, मन दा

0: is for a pretty one day.
1: तानवी कंचन हो गया मानवी परी संगत महाराज कहते आज तो एदा नाम मुरारी है प्रेमा कौड़ी महाराज कहते मुरारी नाल कौड़ी बोलना औखा होगा अख सतना एदा नाम सी मुरारी रख दे हूं एक जकारा देना जेड़ा मैं हिल गया पढ़ गुरु अमरदास जी ने नदर करके ए मुरारी प्रेम कौड़ी नू मुरारी नू ऐ नदर करके एहो जी अवस्था ते पुजा दिता के नाम दूजे नू जपान वाली सत्या दे देते दूजे नू नाम जपान

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करने वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: सात संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: सात संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: सुनत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊत पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: तिहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

निरंकार है नहीं लगे नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये को रहना पर ये पाइए को रहना पर ये पाइए।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्ण बरत्या कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को रुती हुरत होए नान पाहे बारा को रंग ना सोए पैबज खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पंक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: द्वापुरा तपे का सत गिर बाहो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर बाहो
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पद करनी।

पौड़ सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता।

ओडिशा में हो दयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड रहया प्रभो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: Chalang prakasan ka mitto subhasan ka ajab sarupan ka mitto bhutan ka mitto pasan ka atman prabha ka chalang anangya ka mitto apanga mad par santwa prasad. मन मन प्रणाम गुण गण मोदाम अर बर अगंज हर नर पर भंज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंडन पवनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम

थे परमाथे अजो नियमो नी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल परनामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे नरकामंग बिपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासे स्वतर्भंग बिपूते सदा सचदा नंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बिपूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भूते स्वयं पव शुभंग सर्वदा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

गुर भेटत अलख लखाया, जैसे बिखै हेत पार नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी।

ब्रह्म ज्ञानी महापुरख मस्तवाणे आले महापुरख शिमले बड़ा वड्डा उन्हां दा समागम सीगा ते उत्थों दे जिन्ने भी रियासतां दे राजे सन उन्हां ने रल के महापुरखां दा वड्डा समागम रखिया। महापुरख नाम ते बड़ा जोर दिंदे सन, भाई परमेश्वर दा नाम जपो ते अपने धर्म दी किरत बिरत करो। महापुरखां ने समागम रख लिया, सारी संगत महापुरखां दे समागम दे विच शमूलियत करिया करन। महापुरख कीर्तन करदे सन, ढाई ढाई को तक महापुरखां दी आवाज जांदी सी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, वो सारी सृष्टि नूं करनहार ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है। इसे तरह कथा कर रहे सन प्रिंसीपल गंगा सिंह होनी, वो बाद विच कथा करिया करन ते उन्होंने बड़े गहरे शब्दां दे उपर कथा कीती। वो परमात्मा दी ईस ते जीव दे मेल दी कथा कीती, अनुभवी ज्ञान दी कथा कीती। ते जदों महापुरखां दे कोले आया ते महापुरख भांडे मांज रहे सन मिट्टी दे नाल, ते महापुरखां ने प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं कहा, वह कहन लगे भी तुसी कथा बड़ी सोहनी कीती है, अनुभवी ज्ञान दी कीती है, जड़ी ईस ते जीव दा मेल मिलाप दी कीती है, अणहद रस दी कीती है, इनू अते अमली जामा पहनाया है कि ते इह रस नूं आप अपने जीवन दे विच माणिया है, जिस परमात्मा दे रस दी कथा कीती है। ते प्रिंसीपल गंगा सिंहनी कहन लगे, महापुरखो असी तां ग्यानी लोक हुंने आ, असी तां किताबी ज्ञान पढ़ के संगतां नूं सुना दिंने आ, साडे कोले अनुभवी ज्ञान कित्थों आ गया, असी तां किताबां बहुत ढेर सारियां पढ़ लैंदे आ, असी वेदां शास्त्रां नूं पढ़ लैंदे आ, बस असी किताबां दे नाल शब्दां दा जाल वधिया परोर लैंदे आ, संगतां साडे वस दे विच आ जांदियां ने वी बड़ी सोहनी कथा कीर्तन करदे हन, इस करके असी किताबां दा ज्ञान तां बहुत रखदे आ, पर अनुभवी ज्ञान साडे कोले इक छिण मात्र भी नहीं गा। प्रिंसीपल गंगा सिंहनी लिखदे हन, कहिंदे मैं नास्तिक बिरती वाला सीगा, मैं रब दी होंद नूं नहीं सी मनदा, पर कथा मैं जरूर करदा हुंदा सी। अज दे बड़े इहो जे ज्ञानी हन जेरे चार छिलड़ां दे वास्ते कथा तां करदे हन, पर रब दी होंद नूं नहीं मनदे, रब नूं नहीं मनदे, इहो जे बड़े नास्तिक बिरती वाले ने। ते प्रिंसीपल सिंह हुणी कहिंदे वी मोहना दे विच्चों मैं भी इक सीगा, मेरी भी बिरती इहो जिहा सुभाअ ही बणिया होया सी, आंदे महापुरखां ने ना मेरी बांह पकड़ी, उसे तरह उन्हां दे हथ मिट्टी दे नाल बर्तन मांजदिया मांजदिया लिबड़े हुए सन। महापुरखां ने जदों मेरी बांह नूं पकड़िया ना ते उसे समय शरीर दे विच इक चरनाहट पैदा हुई, वह अवस्था बन गई जिहनूं गुरबाणी दे विच शब्द कहे ने, गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, वी गुरमुखां दे शरीर दे जिन्ने रोम हुंदे ने ना उन्हां दे विचों वी वाहिगुरू वाहिगुरू दीआं धुनां आउंदीआं हन। बस गल की सी, प्रिंसीपल गंगा सिंह जी कहिंदे मेरी बिरती लग गई वह परमात्मा दे नाम दे विच, मेरे शरीर दे विच इन्ना रस पैदा हो गया, मेरी रसना ते इहो जिहा रस पैदा हो गया, दुनिया दा इहो जिहा कोई पदार्थ बंदा खा लवे वह रस नहीं आउंदा जिहड़ा रस परमेश्वर दे नाम दे विच है। कहिंदे मैनूं इन्ना क रस पैदा होया, महापुरख 40-50 सैकेंट मेरी बांह नूं पकड़ के रखिया, जिवें कोई ट्रांसफर कीता मेरे अंदर शरीर, इसे तरह मेरे नाम हिरदे दे विच वस गया। जदों नेत्र खोले ना महापुरखां ने अपना हथ छड्या, अवस्था फिर उवें हो गई। मैं महापुरखां नूं कहा भी महापुरखो ये हथ क्यों छड्या तुसी? कहिंदे ज्ञानी जी उधार दा बहुता समा चलदा नहीं गा, अपनी कमाई करनी पैंदी है, जिहड़ी तुसी कथा स्टेज ते करके आए ना अणहद रस दी

परमात्मा दे घर दे विच सब किश है। कोई एहो जा पदार्थ नहीं जिहड़ा वाहिगुरु जी दे घर दे विच ना होवे। हे भाई, ओ परमात्मा दे घर दे विच सब कुछ ही है ते नौ निध भरे भंडार, नौ निधियां हन जिहड़ियां आसन है, बसन है, भू है, पद्म है। इसे तरह खालसा जी महापद्म है, नीलम है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਭਰੇ ਹਨ।

गनगा बनी हुई है। उन्हें गल छुपाई नहीं मैं जोगी क्यों बने। महान पुरुष दी जद हिरदा निर्मल हो जाता है उन्हों अपनिया कमजोरिया कबूल करने दे कोई संकोच नहीं आता, वह पढ़ते भी नहीं पाता, वो छुपाता भी नहीं। यह भी महसूस करता यह हकीकत है, ना परमात्मा दे कोलों छुपाता है ना जगत कोलों छुपाता है। इस संबंध च भी मैं थोड़े सामने किसी वक्त खोलांगा गल कि करीबन करीबन भगत जद अपने आप नूं पेश करदे ने अपनिया बड़िया कमजोरियां दा जिक्र करदे ने। यह खोलांगा किसी वक्त, काले मेडे कपड़े काला मेडा वेश, गुने ही भरिया मैं फिरा लोक कहन दरवेश, भावें फकीराना मेरे कपड़े ने काले कपड़े ने सूफी पहनते हैं पर मैं तो गुनाहा नाल भरे होया उपरों फकीर दिसदा पिया। बाबा फरीद जिनको चित मैं नित मैं चित मोतन की तन मोतन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रती फुन तामन में गन काग्रह कीना, दृग है अबला ब्रिद कंदरब पे और मोए देकार जो मार अधीना। कहिंदा लानत है ऐसी औरत ते जिसका पति सम्राट है राजा है छत्रपति, ते ओ हिरदे दे च कोचवान नू जो उन्हां दा रथ चलांदा सी रथ ड्राइवर कोचवान नू हिरदे च रखदी है, लानत है। फिर कहिंदा है उस कोचवान ते भी लानत है, नमक हराम है, मालकन ते मालक दे घर उसने डाका डाले है। फिर कहिंदा नहीं मेरे ते भी लानत है। ये हिरदा बनया सी परमात्मा दी याद वास्ते, मैं उन्हों एक पासे करके उन्हों हिरदे च रखे। कहिंदा मेरे ते भी लानत, ओए मोए धिकार जो मार अधीना मेरे ते भी लानत। बहुत वड्डी गल है। धृग है अब ला ब्रिद कंदर्ब पे और मोए धिकार जो मार अधीना। अखीर दिच कहिंदा है इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। ए रीत मैं छड़ देती क्यों, ये प्रीत झूठी है जगत में झूठी देखी प्रीत, ये कुछ भी नहीं है। ए रीत मैं छड़ देती निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। कहिंदा हैगा ते मैं निरप राजा जोगी हो गया। हुण ईश्वर दा चिंतन करना, हुण हिरदे दे विच मैं रब नु वसाण दा यतन करदा, उनु याद करदा। हिरदे चो कड़िया है राणी नु, हिरदे ते चो वसाण दा यतन कर रहे हैं रब नु परमात्मा नु। इस रीत समूह की प्रीत तजे, निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चेना। इस संसार तो चोट खा के परमात्मा दी तलाश ते चले, महात्मा बुद्ध अकल तो चोट खा के प्रभु दी तलाश ते चले। लेकिन आम हालत विच ऐसा हुंदा है, महानता शब्द दी चोट लग गई है सत्संगी है ते निराश होके उदास हो गए। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। इहदे च खतरा नहीं क्योंकि शब्द दी चोट जिसनों लगी है वो आत्म क्रांति करेगा, अपने आप नूं बदलेगा। और अकल तो चोट जिसने खा दी है, संसार तो चोट खा दी है, दो खतरे ने। हो सकता है आत्म क्रांति ना करे, आत्महत्या कर बैठे, सुसाइड कर बैठे। हो सकता है अपने आप नूं बदले ना बल्कि खत्म करे अपने आप नूं, या अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करे। गालिब जैसा सियाणा मनुख जो कहिंदा दुनिया एक बच्चियां दा खिडौना प्रतीत आउंदी है, दिन रात शराब दे डुब के रह गया। दिन रात बड़े कीमती बोलने आउंदे और मुतस्बी भी नहीं सी मुसलमान होंदा होया। कहिंदा असल धर्म की है वफादारी बशर्ते अस्तवारी, असल ईमा है, असल ईमान की है भरोसा विश्वास।
भरोसा नहीं।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जी पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तो तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर्दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां है तो फिर लोभ दी कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहे हां जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा होई सच्चे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वो शांत हो गई। झूठ किसनों कहंदे ने जो है ते नहीं हो जांदा उन्हों मिथ्या कहंदे ने है पर नहीं हो जांदा। बचपना है सी नहीं हो गया जवानी है एक दिन नहीं हो जाती बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देता है जो है वो नहीं है दे बदल जाता है उन्हों मिथ्या कहंदे उन्हों झूठ कहंदे कूड़ सब संसार।
जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है, परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने, और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा, तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने और मन की यात्रा रुक जांदी है। ऐसा नहीं कि मन टिक जांदा है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, वो सही गर्दिश दे च, जिन्हों घूमण घेरी कहिंदे ने, जिन्हों चक्कर कहिंदे ने, और मन सीधे रस्ते तो भटक जांदा है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बने है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण ये पदार्थां तो नहीं बनेगा, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर, हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी, ये पूरा खुलासा आप सरवन कर रहे हो, अरवद नरवद धुंधु कारा, धरण न गगना हुकम अपारा, नांद न रैन चंद न सूरज, सुनने सुन समाध लगाएना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है, धुंध ही धुंध से। उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाओ होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की से, वो ब्रह्मंड दी पहली आवाज से, पर वो आवाज की से कलगीधर कहिंदे ने, ओ अंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी पहली आवाज की सी, ओ अंकार। इनू कबीर भी कहिंदे ने, ओ अंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करदे ने, और उस बाणी दा नाम भी है ओ अंकार। ओ अंकार ब्रह्मा उत्पत, ओ अंकार किया जिन चित, ओ अंकार सैल जुगवै, ओ अंकार वेद निर्मय। हुण इस दे च मैं थोड़ा समा ना लवां, क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तों अरबां खरबां सूरज पैदा है। पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है ना, दिन सी ना रात सी, ना सूरज सी ना चंद्रमा सी, ना ए जमीन सी ना आसमान सी, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना, ये धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सन। इस धुंध दे एक कवाओ होया, कवाओ ओंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े, धुंध पानी बन गई, ए धरण ए धरती सूरज दा टुकड़ा। समा पाके जद ठंडी होई तो ए फिर पत्थर दे रूप दिच प्रगट हो। संसार दिच आकार पहले पत्थर दा बनया, पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया, बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दिच प्रगट होया, और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दिच प्रगट होए उनू मानव कहिंदे ने, मनुख कहिंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है, तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच है गए। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुआं तो लंघ के आया है, मनुख बने। मैं एक मिनट लवां, पत्थर टोटली सुत्ता होया है तो सुते हुए की कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर की कोई लोड़ नहीं। पत्थर जब मिट्टी बनके बनस्पति के रूप में प्रगट होया है, तो थोड़ी जिया बनस्पति जागी उदी लोड़ है, पानी उदी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति
लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप विच प्रगट होए वो पशु पक्षी इन्हां नूं निरी प्यास ही नहीं लगती, भुख भी लगती, इन्हां कोल आवाज भी है। और पशु लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद मनुख दी शकल विच प्रगट होए, मनुख कोल भुख प्यास ते है, आवाज भी है, पर आवाज दे कोल अल्फाज भी ने, अखर भी ने, पशुओं कोल नहीं ने। और मन इस मानव दा पशुओं नालों बनस्पति नालों ज्यादा जागे। मनुष्य दा मतलब भी है जिदे कोल मन है, मन रखदा है, जो विचारां दा प्रवाह रखदा है, सोचनी दा प्रवाह रखदा है, यादां दा प्रवाह रखदा है, चिंतन दा प्रवाह रखदा है, मानुष मनुख। मनुख तो पिछे ने पशु, पशुमा तो पिछे है बनस्पति, बनस्पति तो पिछे है पत्थर आकार रूप देच। इज कह लो वो सारे ही पशु ने, पशु दा मतलब जो पाश देच ने, पछड़े हुए ने, पिछे ने। इन्हां पशुआं देच चौपाए जानवर पंछी, इन्हां पशुआं देच बनस्पति, इन्हां पशुआं देच पत्थर। प्रकृति चलांदी रही, प्रकृति दे अखरी अर्थ ने नेचर नहीं ने, इहदे अर्थ जो इंग्लिश दे च नेचर कर लेंदे ने नहीं, पर कृत, कृत तो पहले, तो कृत तो पहले ते करता है, ये सब कुछ करते तो चलता है, करते पुरुख तो चलता है। कर्ता पुरुख की है एक महाचानन है, प्रकाश है, उसे तो अरबां खरबां सूरज होए। परमात्मा सूरजां दा महासूरज है, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। परमात्मा तो अनंत सूरज होए, सूरज तो ही अनंत धरतियां होया, पत्थर होए, बनस्पति होई, पशु होए, मानव होए, प्रकृति चलांदी रही। ऐसा भी सी किधरे तन अगे लंघ गया, मन पछड़ गया, किधरे मन अगे लंघ गया, तन पछड़ गया। जैसे कुछ हाथी, गऊ, मोर, हंस, मन ते उन्हां दा अगे चला गया, कुछ एकदा समझ ज्यादा है, पर तन पिछे रह गया, अजे पशु ने, पशु ने। किधरे किधरे तन ते अगे लंघ गया, मनुष्य बन गया, मन पछड़ गया, तो मन दे तलते अजे भी पशु ने, उन्हां नूं ही सतगुरु कहिंदे ने करतूत पशु की। मानस जात तन मनुख दा है, दिखाई मनुख देंदे ने, मनुख नहीं है अजे। इन्हां दा मन इतना विकसित नहीं कि समझ सकन, सोच सकन। अजे पशु ने, अजे ना समझना है। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि पत्थरां तो मनुख लंघ के आया है, तो पत्थरां दे अंदर संस्कार ने। बनस्पति तो मनुख लंघ के आया है, तो बनस्पति दे अंदर संस्कार ने। पशुआं तो मनुख लंघ आया है, तो पशुआं दे अंदर छाप है, स्वभाव है, संस्कार अंदर स्वभाव ने, संस्कारां दा संग्रह ही स्वभाव बन जांदा है, वो स्वभाव है। ये सत्संग, ये कथा कीर्तन, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप उन्हां संस्कारां नूं धोणा है, कढ़णा है। जिस दिन अंदरों सारे पशुआं दे स्वभाव संस्कार निकल जांदे ने, उस दिन असली मनुखता प्रगट होंदी है। लोकी कह देंदे ने इहदे अंदर इंसानियत दा मादा है, मनुखता दा मादा है। फिर एक दिन ऐसा आंदा है, जप करदिआं करदिआं ये मनुख मनुखां तो भी अगे चला जांदा है। तुसीं आखोगे अगे किथे चला जांदा है, फिर उन्हों कहिंदे ने मनुख नहीं, ये ते देवता है। जिन मनुख ते देवते की है, करत ना लागी बार, ये देवता हो गया। इहदा दीवा जल गया, दीपक जल गया, इहनूं निरा संसार नहीं दिखाई देंदा, संसार विच निरंकार दिखाई देंदा, इहनूं पदार्थां विच परमात्मा दिखाई देंदा,
ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, 5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ, ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਦਾ। 21-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 21-22 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21-22 ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿਸ਼? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬੋਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰਸੀ ਬਦ ਅਖਤਰ ਕਸ ਅਸਤ ਕੇ ਦਰ ਰਾਹ ਤਸ਼ ਰੰਜ ਦੀਗਰ ਕਸ ਅਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਹਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਵੈਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਗਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਆਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਐ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
फिर कलेश बनिया रहेगा, फिर बेचैनी बनी रहेगी। ये समझ जिसनु आ जाए, समझ लो मन ज्यादा जा गया। मैं अर्ज करा हूं मनुख के अंदर, किसी के अंदर पशु के संस्कार बड़े प्रबल होणगे, किसी के अंदर बनस्पति दे, किसी के अंदर पत्थर दे। असी कह देने ये दे पत्थर दिल है, इहदा ते दिमाग पत्थर है। हिटलर, मोसोलिनी, औरंगजेब, चंगेज खान, हालांकि असी कह सकते हैं दिल नहीं सी पत्थर से, दिमाग नहीं सी पत्थर से। इन्ना कठोर मनुख, इतना सख्त मनुख, बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी चंगेज खान, लाशां नूं तड़पदियां देख के हलाकू हसदा हुंदा सी, तिन्ना भरावां नूं कतल करके औरंगजेब ने जशन मनाया सी। 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, ये कोई पत्थर दिल कर सकता है, पत्थर दिमाग कर सकता है। आकार रूप दे पहले पत्थर प्रगट होया, वो जो अग दा गोला ठंडा होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार पहले पत्थर है। मनुख करीबन करीबन अपने पिछोकड़ नु पूजदा रहा है, ये भी मैं अर्ज करा। सारी दुनिया च पत्थर भी पूजे जाते, बनस्पति भी, दरख्त भी पूजे जाते हैं, और पशु पक्षी भी पूजे जाते। अज भी स्नैक टैंपल बहुत वड्डा चाइना दे चाहे मलेशिया दे चाहे सप्पां दी पूजा चाइनीज लोग करते हैं। भारत दे च गऊ दी पूजा, सप्पां दी पूजा, नाग पंचमी एक बहुत वड्डा त्यौहार है। दरख्तां दी पूजा, पिपल दी पूजा, जंड दी पूजा, बोड़ दी पूजा, बेरियां दी पूजा आदि काल तो चली आ रही है। ऐसा देखे जिस जिस पत्थर नो सुभाग मिल गया, पत्थर ही हीरा बन जांदा, पत्थर ही मोती है, पत्थर ही मूंगा है, पत्थर ही पुकराज है, पत्थर ही नीलम है, पर ताज दे जड़िया जांदा है। ये भी मैं अर्ज करा, नीलम दा मोर अकाल तखत ते पे है, बड़ा खूबसूरत। थाईलैंड दे नीलम दी मूर्ति है महात्मा बुद्ध दी, कहिंदे ने घट तो घट ओ मूर्ति अज दे हिसाब नाल 20 करोड़ रुपए दी है। पूरा नीलम दा पत्थर उदी मूर्ति बनाई है। तो हैं ते ए भी पत्थर चमक गए ने, जरा कोमल हो गए ने, रोशनी आ गई है। तो पत्थर भी कीमती हो सकता है, वनस्पति भी कीमती हो सकती है। चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फूल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है, ऐसे वनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने ऐसे हंस वर्ग है, कोई बड़ा शरीफ से भले मानस हो वैसे ही कहने निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर हो वैसे ही कह देना निरा शेर है, ते शेर दिल है, शेर। जिंदगी देख कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया, कहने ते हीरे वर गए, निरा हीरा। तस्बीहां ते दें दे। पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल वगे। वनस्पति दे च महक आ जाए ते कोमलता आ जाए, ते मनुख दे च कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो ये वनस्पति नालों पछड़े होया। पशुआं दे च दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए ते मनुख दे च ना आवे तो इहदे नालों पशु चंगे ने, कुछ पशु चंगे ने। ये भी मैर्ज कर दें, मनुख हो के चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थरां चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी है, ते हीरा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने, ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख का मन परमात्मा हो जाता है।
ईश्वर हो जाता। बिगड़ो कबीरा राम दवाई साच भयो अन कदे न जाए, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसी का जागया इंसानियत उस दे च उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिड़ा अचेत भाग मन दा है वह पशु होवेगा, बनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोलने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरों के संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिहा जागा बाकी सुत्ता पे है, जिवें पत्थर सुत्ता होया। पत्थर पूरन सुत्ता होया, परमात्मा पूरा जागया होया। सुते दी यात्रा है जागे, प्रकृति पत्थर नू थोड़ा जगांदी है बनस्पति दे रूप, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षी।

कुछ प्राप्त हो गए। कारण मैं फिर अर्ज करा, जेड़ी चीज मुफत दे च मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता होती। तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख ने। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अगे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो यह पशु बनेगा। शरीर का अंत होया तो अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया तो देव बनेगा, एक पवित्र रूह भटकती रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इनू भूत प्रेत कहते हैं, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। सुखमनी साहब, 6 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने, तो इतनिया तो रूह समझ लेनिया चाहिए ब्रह्मंड के हैं। चंगियां नूं देव कहिंदे ने, माड़ियां नूं भूत प्रेत कहिंदे ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र करते हैं, कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्यादर, कहूं भय किन्नर पिसाच, कहूं प्रेत पिसाच, भूत प्रेत पिसाच। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चो निकलता है, सारे संस्कार उसे दे चो दे ने, चंगे ते माड़े, उन्हें ही संस्कारां दे मुताबक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने, जिवें हिटलर, मोसोलिनी ने, चंगेज खान, हलाकू, औरंगजेब, हरनाकश, इन्हां नूं छेती जन्म नहीं मिलता। इन्ने माड़े संस्कार, पत्थर दिल, पत्थर दिमाग, कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे उहदे राही इन्हां दा जन्म होएगा, उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन, जप करदे सन, तप करदे सन, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, मुक्त नहीं हो सके। जिवें 100 मील दी वाट होवे, 90 ते तय कीती सी, पर शरीर दा अंत हो गया, सूक्ष्म शरीर ते अस्थूल शरीर दा संबंध टुट गया, तो यात्रा ते विचे रह गए। इस तरह के सूक्ष्म शरीर अति पवित्र होंदे, इन्हां नूं देव कहिंदे ने, इन्हां दा भी जल्दी जन्म नहीं आउंदा। क्यों? बिल्कुल देवी मां चाहीदी है, पवित्र गोद चाहीदी है, संस्कारां दे अनुकूल चाहीदी है, तां जन्म होवेगा, उंज नहीं होवेगा। यह प्रकरण अलग है, किसी वक्त मैं खोलांगा। अज ते जो कुछ मूल गल है वह थोड़े सामने रखा। आम साधारण मनुख 10-12-13 दिनों के अंदर जन्म ले लेंदे ने, कई ते इधर मरे इधर किधरे गर्भ दे प्रवेश कर गए। आम साधारण मनुख, साधारण तो मुराद की ही, ना देवता बन सके, ना पशु बन सके, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे ही रहे। समाज दा भय, कानून दा भय, गलत नहीं करते रहे, बस मनुखां दी तरह जीवे, अगे नहीं जा सके, मौत हो गई है, इन्हां दा छेती जन्म आउंदा है। आम साधारण सूक्ष्म ढांचे बड़े छेती जन्म देंदे, असाधारण विशेष जल्दी जन्म नहीं देंदे। इन्हों इकबाल ते इंज कहिंदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूर ही पेरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान विच कुछ ऐसा फुल खिड़दा है जो मनुखता नूं मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा है, कोई नवी क्रांति लैंदा है, पर कहिंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी। बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करते ने, इस देह को सिमरें देव याद करते ने, सानू जन्म मिले, पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते। जिवें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होंदा, घास कंडे पैदा हो जाते, हो जा गुलाब नहीं पैदा होंदा, चंदन नहीं पैदा होंदा। हर गोद देवते नूं जन्म नहीं दे सकदी। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, गुस्ताखी माफ, इतना मैला हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे ने, सामने आ गए ने, हुण मैं कह ही रहा। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा दी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिगदार।
ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ

0: देखी सतम ए वाए नकदे जिंदगी राय गांगु यस्त। मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी, फिर नकद जिंदगी की सी जिड़ा मेरे मुंह दे च दम सी, नकद सी जिड़ा दम आया ने उधारी सी, जिड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया, वो ते खर्च हो गया। मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ इक्को ही दम है, इक्को ही दम है। नकदी मेरे कोल इक्को ही दम है, इक्को ही दम है हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एक दम दी की जिंदगी है, नहीं, एक दम विच परमात्मा मिल सकता है, एक दम विच सारा जहान मिल सकता है, एक दम विच सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है, एक दम विच परम रस मिल सकता है। पर मनुख इस एक दम नु किवें बतीत करता है, इसे एक दम नु बतीत कर छड़दा है गुजरे हुए दमां दी याद विच, इसे एक दम नु बतीत कर छड़दा है आने वाले दमां दी चिंता च, और दम दम करके सारी जिंदगी रायगां चली जांदी, व्यर्थ चली जांदी। ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगां गुयस्त। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने वर्तमान विच वर्तदा होवन हार सोई परवाना। संसारी ते भगत दी पहचान के बस दो शब्दां दे पहचान, लिबास तो पहचान नहीं होवेगी भगत है संत है। सारी दुनिया दे धार्मिक लिबास अलग अलग ने, धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, साधना है। किस तरह अंदाजा लगावांगे संसारी है ए भगत है। जो भूतकाल दियां यादां दे जी रहा है, भविष्य दियां चिंतावां दे जी रहा है संसारी है, पर जो वर्तमान दे टिक गया है भगत है। भगवान दा रूप है, उते ईश्वर दा रूप है। वर्तमान दे टिकदे आ होवन हार सोई परवाना। जो हो गया है ये होना ही सी, होना ही है, अनहोनी नहीं है, अनहोनी नहीं है। ठीक है जवान जैसे बुढ़ा होने लगता है एकदम ख्याल आंदा है अनहोनी होगी, अनहोनी होगी। यही कारण है कि सारे जग दस देने, अगर 60 साल है 50 दस देने, 50 है 40 दस देने, 40 है 30 दस देने। और अक्सर स्त्रियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं, उत्थे ही रुक जांदियां, उत्थे ही रुक जांदियां। कारण बुढ़ेपा अनहोनी है। कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, अनहोनी नहीं है। मौत ते होनी है, अनहोनी नहीं। भगत कबीर कहंदे ने पाड़ो सीखे जो हुआ तू अपने भी जान, समझ ले मेरी अर्थी उठी। ते नहीं चुकया शायद पड़ोसी ने अपने कंधियां ते मैनू चुकया है। इस तरह समझ तू अपने भी जान, ऐसा ओही जान सकदा है जो वर्तमान दिच आ गया। तो वर्तमान दिच टिकदियां होवन हार सोई परवाना। जन्म हो गया है कबूल, जीवन कोल है कबूल, मरण सानू कबूल। लेकिन मरदे दम तक मनुख नु सिर्फ जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं। इस वास्ते मरदे दम तक जन्म दिन मनांदा है, मरण दिन नु भुलाने दी कोशिश करदा है। और यही कारण है कि परम आनंद दी प्राप्ति तो वांझा रह जांदा है, रोग दिच जीवदा है, सोग दिच जीवदा है। जबकि वर्तमान दिच जीण वाला रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। धर्म दी ए महान साधना सारी दुनिया दी धन गुरु नानक देव जी महाराज करांदे रहे, दसते रहे और लोगां नू रोग ते सोग तों कढ़दे रहे। इस वास्ते जिहड़े जिहड़े साधना करके वर्तमान दिच जीवे ते भगवान नू जिंदगी च प्रगट कीता, उन्हां सारियां दी जबान तों एक बोल निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM Gurbani Segment Tuhade Tak. Swargwasi Sardar Ajit Singh Di Baad, Swargwasi Mata Surinder Kaur Baad Di Yaad De Vich 1550 AM Ton Gurbani Prachar Kita Janda Hai. 1550 Radio De Utte Gurbani De Kise Bhi Program Nu Sponsor Karan Vaste 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2990152 Street ਸਰੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 3 July ਤੋਂ 8 July ਤੱਕ, 2 pound ਪਲੇਨ ਗੁੜ 2.98 ਨੂੰ, ਰੋਮਾ ਟੋਮੇਟੋਜ 98 cents ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਰਕ 98 cents ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ BC ਹੌਟ ਹਾਊਸ ਟੋਮੇਟੋਜ 98 cents ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
2: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
4: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
4: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
5: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
4: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।